आया मीजी ने मेजे के करना पता कुन्यो चिके 25,000 आगो मीजी ने मगात के करना पता कुन्यो चिके 10,000 इन्हें ने नोटों नांगलालुन आमे जे इप्का को आउट स्टाटस 74 आश ला बता कोई डुगे नंबर सेवन स्टाटस 74 आश डुगा नंबर सेवन ये सगे रिपीकिंग में मीते जे नगा को इंजन चीता नगा को इंजन को विन रोस ने के 44 शिलिंग से अगर इतने गुरे ताई तास कहीं को आज शिलिंग में आता नो जितने गुरे पोल कहीं को आज ले बोता के गई जगह तो मन जगा को मु को इंजन अंगिने ने तो मीजु तुंगु नी को के क्वा मना नो ए कुत को गे मुजी नो लगा इन तो कोली ने नगरातन सिमे नो गुनी इन्या के तुगु ने तो मीनो सोगो ने को इंगुनी कल्या मेजिल सिमे मो को तीत्यम तमेनो रो रपेनो जो 35,000 जब सिमेत आगो स्पेसिफिकली रपेनो जो पा सिमेत को बजीत न मतंदा सिमेत का पसना ना गुरे ताच जिक्री ए ना ना तई भैसे मुलेगा के में जगे को निसी मनो तक स्टेटस 74 आश लबा तक दुगे नंबर 7 स्टेटस 74 आश लबा तक दुगे नंबर 7 हाय मामे ता मचे जांगे इने के ने यमन स्टेटस 74 आश नंबर 7 वा तो चंगा मुके स्टेटस 74 आश नंबर 7 तो ने काजे